0: Casino.
1: Casino?
0: No, sir.
2: तुम्हें जुआ भी खेलना?
0: मालूम है तुम जानती नहीं हो. I'm a gambler.